आकाशवाणी इम्फाल ngasi thang jinumit September gi tang manga inglising ani kuntaruk thawan gi nakunmari ni panba sakab delishing maga chamapal nipunipal yai forever numidasi gi ayupung manga makhai ta ki bagaloinena आकाशवाणी इम्फाल गी संगाई चैनल थोरम संदोक पहुजरी संदोक चरी व मेगाहर्ट्ज साम अहुम दशमिक मंगानी थोरम ताविरी व ख्वाई पुनमपु तराम नोक चरी खुरुमजरी नसी इसी सितंबर की तांग मंगा भारत की अनिसुबा राष्ट्रपति ओबिरंबा डॉक्टर सबापली राधा कृष्णन गी मपोक नुमित ओजाशिंगी नुमितनी लमदमसीदा लेविरीबा ओजाशिंगबू इकाई कुंदबुचरी थागत फोंगदुकचरी

कंगले पुंगे लमदम सीधा म पारी ममूम कयान पलिये बंधाऊ मान बे कयान म पारी ममूम कयाबु नौ युग नौ गुन मंगम नन वहाई दन अयुकी